0: को इन्टरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9008213424 र 9855014175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला बिहानको ठिक 6 बज्यो।

0: हस्पिटल दुलेगौडा बिपी चोकमा यही भदौ 27 गते शनिबार
1: पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका पेट मोटु छाती सुगर तथा थाइरोइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र पौडेल, हाड जोनी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर भीम सिगदेल, वरिष्ठ नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अम्बालिका साक्य।
0: पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका एनोमेली स्क्यान थाइरोइड सहित भिडियो एक्सरे डाक्टर सन्तोष बराल, बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञसँग सेवा परामर्श लिन सम्पूर्णमा अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क तनहु सेवा हस्पिटल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 बीपी चोक तनहु, फोन 065414377, मोबाइल 98564443।
2: ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र शुक्ला हिलेटार शिवालयको विकास र दुग्धेश्वर महादेवको मन्दिर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने महानुभावहरू
3: रामबहादुर परियार घारी शीतल बस्ती रु 15,055,
2: शुक्ला गण्डकी पत्रकार मञ्च शुक्ला गण्डकी रु 10,100,
3: हुमनाथ अधिकारी ढोरफिर्दी गणेश टोल रु 10,155,
2: जमुना पौडेल पराजुली ढोरफिर्दी हाल अमेरिका रु 10,050,
3: शिव अधिकारी ढोरफिर्दी ठुलढुङ्गा टोल रु 25,000,
2: ऋषिराम पौडेल सेराबेसी रु 10,000,
3: रसमाया गुरुङ दुलेगौडा रु 55,555,
2: दलबहादुर छेत्री मिनाम खानी रु 11,115,
3: सूर्य प्रसाद भट्टराई ढोरफिर्दी हिमाली टोल रु 30,111,
2: कृष्ण बहादुर बसेल ढोरफिर्दी गणेश टोल रु 21,000,
3: बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ढोरफिर्दी उत्तम टोल रु 15,005,
2: कलावती वाग्ले ढोरफिर्दी हिमाली टोल रु 10,125,
3: दिलबहादुर श्रेष्ठ दुलेगौडा रु 101,111,
2: सूर्य प्रसाद भट्टराई ढोरफिर्दी सेन्टर चोक रु 51,111,
3: ऋषिराम महत ढोरफिर्दी हिमाली टोल रु 15,055,
2: कृष्णराज घिमिरे दुलेगौडा रु 55,555।

0: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
1: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकिल स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में टीवीएस कंपनी का बाइक स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग

0: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9800-28-13-424 र 9800-560-14-157।
1: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6। शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
0: यति बेला दिउँसोको ठिक 2 बज्यो।
2: जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।